आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।

मैंने उनसे कुछ नहीं कहा बजुज इसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया है, वो ये कि तुम खुदा की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू उनका निगरान था और तू हर चीज से खबरदार है।

और अगर हम तुम पर कागजों पर लिखी हुई किताब नाजिल करते और ये उसे अपने हाथों से टटोल भी लेते तो जो काफिर हैं वो यही कह देते कि ये तो साफ और सरीह जादू है।

0: और अगर खुदा तुमको कोई सख्ती पहुंचाए तो उसके सिवा उसको कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर नेमत और राहत अता करे तो कोई उसको रोकने वाला नहीं, वो हर चीज पर कादिर है।
1: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قل اي شيء اك

तो उनसे कुछ उज्र न बन पड़ेगा और बजुज इसके कुछ चारा न होगा कि कहें खुदा की कसम जो हमारा परवरदिगार है हम शरीक नहीं बनाते थे।

0: देखो उन्होंने अपने ऊपर कैसा झूठ बोला, और जो कुछ ये इफ्तरा किया करते थे सब उनसे जाता रहा।
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

0: हमको मालूम है कि इन काफिरों की बातें तुम्हें रंज पहुंचाती हैं, मगर ये तुम्हारी तकजीब नहीं करते बल्कि जालिम खुदा की आयतों से इनकार करते हैं।
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا

0: और उसी के पास गैब की कुंजियां हैं जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता, और उसे जंगलों और दरियाओं की सब चीजों का इल्म है, और कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वो उसको जानता है, और जमीन के अंधेरों में कोई दाना और कोई हरी या सूखी चीज नहीं है मगर किताब रोशन में लिखी हुई है।
1: वहुव

0: और परहेजगारों पर उन लोगों के हिसाब की कुछ भी जवाबदेही नहीं, हाँ नसीहत ताकि वो भी परहेजगार हों।
1: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

0: फिर जब चांद को देखा कि चमक रहा है तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं उन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं।
1: فَلَمَّا رَأَ الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ

फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, लोगों, जिन चीजों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं उनसे बेजार हूं।

0: ये वो लोग थे जिनको हमने किताब और हुक्म शरीयत और नबूवत अता फरमाई थी। अगर ये कुफार इन बातों से इनकार करें तो हमने उन पर ईमान लाने के लिए ऐसे लोग मुकर्रर कर दिए हैं कि वो उनसे कभी इनकार करने वाले नहीं।
1: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين।
0: ये वो लोग हैं जिनको खुदा ने हिदायत दी थी, तो तुम उन्हीं की हिदायत की पैरवी करो। कह दो कि मैं तुमसे इस कुरान का सिला नहीं मांगता, ये तो जहान के लोगों के लिए महज नसीहत है।
1: وَمَا

और वैसी ही ये किताब है जिसे हमने नाजिल किया है, बाबरकत, जो अपने से पहली किताबों की तस्दीक करती है और जो इसलिए नाजिल की गई है कि तुम मक्के और उसके आसपास के लोगों को आगाह कर दो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं और वो अपनी नमाजों की पूरी खबर रखते हैं।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हजरात, प्रोग्राम हयात तैयबा की 17वीं नशस्त के साथ कासिम भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, पिछली नशस्त में हम जिक्र कर रहे थे ईमान की उन शुआओं का जो मक्का से बाहर फैलाई गई। आज हम उसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। इयास बिन मुआज, ये भी यसरब के बाशिंदे थे और नौखेज जवान। सुना नबुआ में जंग बुआस से कुछ पहले आउस का एक वफ्द खजरज के खिलाफ कुरैश से हल्फो तावुन की तलाश में मक्का आया था। आप भी उसी के हमराह तशरीफ लाए थे। उस वक्त यसरब में उन दोनों कबीलों के दरमियान अदावत की आग भड़क रही थी और आउस की तादाद खजरज से कम थी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को वफ्द की आमद का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले गए और उनके दरमियान बैठकर यूं खताब फरमाया, आप लोग जिस मकसद के लिए तशरीफ लाए हैं क्या उससे बेहतर चीज कबूल कर सकते हैं? उन सब ने कहा, वो चीज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह ने मुझे अपने बंदों के पास उस बात की दावत देने के लिए भेजा है कि वो अल्लाह की इबादत करें और इसके साथ किसी चीज को शरीक न करें। अल्लाह ने मुझ पर किताब भी उतारी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस्लाम का तज़किरा किया और कुरान पाक की आयात तिलावत फरमाई। इयास बिन मुआज बोले, ऐ कौम, ये खुदा की कसम इससे बेहतर है जिसके लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं। लेकिन वफ्द के एक रुकन अबुल हसरा अंस बिन राफे ने एक मुट्ठी मट्टी उठाकर इयास के मुंह पर दे मारी और बोला, ये बात छोड़ो, मेरी उम्र की कसम, यहाँ हम इसके बजाय दूसरे ही मकसद से आए हैं। इयास ने खामोशी इख्तियार कर ली और रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी उठ गए। वफ्द कुरैश के साथ हल्फ तावुन का मुआहिदा करने में कामयाब न हो सका और यूं ही नाकाम मदीना वापस हो गया। मदीना पलटने के थोड़े ही दिन बाद इयास इंतकाल कर गए। वो अपनी वफात के वक्त तहलील व तकबीर और हमद व तस्बीह कर रहे थे, इसलिए लोगों को यकीन है कि उनकी वफात इस्लाम पर हुई। अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये यसरब के अतराफ में सकूंत पजीर थे। जब सुवैद बिन सामद और इयास बिन मुआज़ के जरिए यसरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बेइज्जत की खबर पहुंची तो ये खबर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान से भी टकराई और यूं उनके इस्लाम लाने का सबब बनी। उनके इस्लाम लाने का वाकया सही बुखारी में तफसील से मरवी है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं कबीला गफ़ार का एक आदमी था। मुझे मालूम हुआ कि मक्का में एक आदमी नमूदार हुआ है जो अपने आप को नबी कहता है। मैंने अपने भाई से कहा, तुम उस आदमी के पास जाओ, उससे बात करो और मेरे पास उसकी खबर लाओ। वो गया, मुलाकात की और वापस आया। मैंने पूछा, क्या खबर लाए हो? बोला, खुदा की कसम, मैंने एक ऐसा आदमी देखा है जो भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। मैंने कहा, तुमने तशफी बख्श खबर नहीं दी। आखिर मैंने खुद तोशादान और डंडा उठाया और मक्का के लिए चल पड़ा और वहां पहुंच तो गया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को पहचानता ना था और ये भी गवारा ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुतालिक किसी से पूछूं। चुनाचे मैं जमजम का पानी पीता और मस्जिद हराम में पड़ा रहता। आखिर मेरे पास से अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ। कहने लगे, आदमी अजनबी मालूम होते हो? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, अच्छा तो घर चलो। मैं उनके साथ चल पड़ा। ना वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे और ना मैं उनसे कुछ पूछ रहा था और ना उन्हें कुछ पता ही रहा था। सुबह हुई तो मैं उस इरादे से फिर मस्जिद हराम आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुतालिक दरियाफ्त करूं, लेकिन कोई ना था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मुतालिक कुछ बताता। आखिर मेरे पास से फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजरे। देखकर बोले, उस आदमी को भी अपना ठिकाना मालूम न हो सका। मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, अच्छा तो मेरे साथ चलो। इसके बाद इन्होंने कहा, अच्छा तुम्हारा मामला क्या है और तुम क्यों इस शहर में आए हो? मैंने कहा, आप राजदारी से काम लें तो बताता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفیح بخش خبر نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور ہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستہ چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگے دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مارے دے رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی مجھے آ بچایا۔ وہ مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: सामईन, वक्फे के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। तुफैल बिन अमरू दौसी, ये शरीफ इंसान, शायर, सूझबूझ के मालिक और कबीला दौस के सरदार थे। उनके कबीले को बाज नवाही यमन में अमारत या तकरीबन अमारत हासिल थी। वो नबूवत के 11वें साल मक्का तशरीफ लाए तो वहां पहुंचने से पहले ही अहले मक्का ने इनका इस्तकबाल किया और नहायत इज्जत और एहतराम से पेश आए। फिर उनसे अर्ज परदास हुए कि ए तुफैल, आप हमारे शहर तशरीफ लाए हैं और ये शख्स जो हमारे दरमियान है उसने हमें सख्त पेचीदगी में फंसा रखा है। हमारी जमीयत बखेर दी है और हमारा शहराजा मुंतशिर कर दिया है। इसकी बात जादू का सा असर रखती है कि आदमी और इसके बाप के दरमियान, आदमी और उसके भाई के दरमियान और आदमी और उसकी बीवी के दरमियान तफरका डाल देती है। हमें डर लगता है कि जिस इफ्तदा से हम दो चार हैं कहीं वो आप पर और आपकी कौम पर भी ना आन पड़े, लिहाजा आप इससे हरगिज गुफ्तगू ना करें और इसकी कोई चीज ना सुने। हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद है कि ये लोग मुझे बराबर इसी तरह की बातें समझाते रहे, यहाँ तक कि मैंने तहैया कर लिया कि न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई चीज सुनूंगा और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करूंगा। हत्ता कि जब मैं सुबह को मस्जिद हराम गया तो कान में रुई ठोंस रखी थी कि मुबाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात मेरे कान में न पड़ जाए, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बातें मुझे सुना ही दे। चुनाचे मैंने बड़ा उम्दा कलाम सुना। फिर मैंने अपने जी में कहा, हाय मुझ पर मेरी माँ की आहो फगा, मैं तो बाखुदा एक सूझबूझ रखने वाला शायर आदमी हूँ, मुझ पर भला बुरा छुपा नहीं रह सकता, फिर क्यों ना मैं उस शख्स की बात सुनूं, अगर अच्छी हुई तो कबूल कर लूंगा, बुरी हुई तो छोड़ दूंगा। ये सोचकर मैं रुक गया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पलटे तो मैं भी पीछे हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो मैं भी दाखिल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आमद का वाकया और लोगों के खौफ दिलाने की कैफियत, फिर कान में रुई ठूंसने और इसके बावजूद आपकी बाज बातें सुन लेने की तफसीलात बताई। फिर अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात पेश कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत फरमाई। खुदा गवाह है मैंने उससे उम्दा कौल और उससे ज्यादा इंसाफ की बात कभी ना सुनी थी। चुनाचे मैंने वही इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी कौम में मेरी बात मानी जाती है, मैं उनके पास पलट कर जाऊंगा और उन्हें इस्लाम की दावत दूंगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाए कि वो मुझे कोई निशानी दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। हजरत तुफैल को जो निशानी अता हुई वो ये थी कि जब वो अपनी कौम के करीब पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनके चेहरे पर चराग जैसी रोशनी पैदा कर दी। उन्होंने कहा, या अल्लाह, चेहरे के बजाय किसी और जगह, मुझे अंदेशा है कि लोग इसे मशला कहेंगे। चुनाचे ये रोशनी उनके डंडे में पलट गई। फिर उन्होंने अपने वालिद और अपनी बीवी को इस्लाम की दावत दी और वो दोनों मुसलमान हो गए, लेकिन कौम ने इस्लाम कबूल करने में ताखीर की, मगर हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलसल कोशा रहे। हत्ता कि गज़वा खंदक के बाद जब उन्होंने हिजरत फरमाई तो उनके साथ उनकी कौम के 70 या 80 खानदान थे। हजरत तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम में बड़े अहम कारनामे अंजाम देकर यमामा की जंग में जाम शहादत नोश फरमाया। ज़िमाद अज़दी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये यमन के बाशिंदे और कबीला अज़द शनों के एक फर्द थे। झाड़ फूंक करना और आसेब उतारना इनका काम था। मक्का आए तो वहां के अहमकों से सुना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पागल हैं। सोचा, क्यों ना इस शख्स के पास चलूं, हो सकता है अल्लाह मेरे ही हाथों से इसे शिफा दे दे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ زماد نے کہا، ذرا اپنے کلمات مجھے پھر سنا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد زماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے، یہ تو سمندر کی اتھا گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں، اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ سامعین، اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں، آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या क्या अख्तियारात हैं?
2: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रिपीटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज़ कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट एंड सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सज़ा हुई हो, वो सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जो उसे सज़ा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज हो रही होती हैं या हेड ऑफ स्टेट आपको विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है। तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
1: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
2: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू फॉर्म लॉज,

0: वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ वो होता है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। सो बुनियादी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे वो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों पे आती है जिन्होंने इन्फोर्स करना है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उसके अलावा मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिविल मैटर तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जैसे इदारों से सामना करना पड़ेगा, और अगर तो आप जो हैं वो किसी क्रिमिनल उससे डील कर रहे हैं तो आपको पुलिस और इस जैसे इदारों, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा और सबसे अहम इदारा है जमहूरी मुल्क में वो है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनज़र रखना है और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो हैं वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रटेशन करते हैं लॉ की और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ये कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी एस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
1: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी, एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी अवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
0: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखें कि कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है। इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फ़र्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ़र्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो वो हमेशा अग्रेसिव मीन्स को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फर्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है इन चीज़ों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम होता है बैन अलावा ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
1: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मरहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे, तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
2: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतकियों के कुछ इल्ज़ाम आए या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर नहीं हो सकती। वो राय ये हो सकती है कि आप इनफरादी तौर पर किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आ रहा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो हायल हों, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वुर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
2: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनाज को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनाज को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फ़र्ज़ समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
1: सर, यूसीपी की अगर हम बात करें तो यूसीपी अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में, और किस तरह से पहुंचा रही है?
2: देखें, यूसीपी में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैनुल अक़वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको बीएस ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही दो और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है, कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैनुल अक़वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो यूसीपी का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है, कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डिवेलप की जाए, उनमें बैनुल अक़वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि यूसीपी का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका पाए, आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dil mein.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो.
1: Yeah. Bohemia.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

कवाली के लिए सबसे बड़ी खिदमत उनकी यही है ना कि वो आइंदा न जाने कितने अरसे तक वो एक सिंबल रहेंगे कि कव्वाल क्या होता है और कव्वाली कैसे गाई जाती है।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन ग़िज़ा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या अख्तियार आते हैं?
2: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पर है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रिपीटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज़ कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट एंड सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सज़ा हुई हो वो सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जो उसे सज़ा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज हो रही होती हैं या हेड ऑफ स्टेट आपको विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है। तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
1: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
2: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू फॉर्म लॉज, वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं।

0: है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनज़र रखना है, और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो हैं वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रटेशन करते हैं लॉ की, और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ये कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी इस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
1: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी अवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
0: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखें कि कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है, इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फ़र्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ़र्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें, तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो हमेशा अग्रेसिव मींस को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फ़र्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है उन चीज़ों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम होता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
1: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मरहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
2: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतगियों के कुछ इल्ज़ाम आएं या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर नहीं हो सकती। वो राय ये हो सकती है कि आप इनफरादी तौर पर किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का आप उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आ रहा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं हैं जो हायल हों, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
1: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
2: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनास को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनास को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनास हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फ़र्ज समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
1: सर, यूसीपी की अगर हम बात करें तो यूसीपी अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में और किस तरह से पहुंचा रही है?
2: देखें, यूसीपी में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैनुल अक्वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको बीएस ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही 2 और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है, कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैनुल अक्वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो यूसीपी का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है, कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डिवेलप की जाए, उनमें बैनुल अक्वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि यूसीपी का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
1: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका पाए, आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
2: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
1: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज़।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौड़ताल सुरौड़ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.ek. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दो चार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

अगर आपका कानूनी हक हुकूमत पंजाब के किसी सरकारी इदारे में ताखीर या बद इंतजामी का शिकार है और ये किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं, तो फिर आप दफ्तर मोहतसिब पंजाब से फौरी राब्ता करके अपना कानूनी हक जल्द हासिल करें। दफ्तर मोहतसिब सूबाई हुकूमत से मुतालिक अवामी तकालीफ और शिकायात के हल के लिए 36 अजला में सरगर्म अमल है। आप अपनी दरख्वास्त दफ्तर मोहतसिब पंजाब को बजरिया डाक, वेबसाइट, मोबाइल पोर्टल या मुतालिका जिला के मोहतसिब ऑफिस में बजाते खुद जमा करवा सकते हैं। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए मोहतसिब ऑफिस की हेल्पलाइन 1050 पर राब्ता करें। अवामी हक का मुहाफिज दफ्तर मोहतसिब पंजाब।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ए सुरोर्तान सुरोर्तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: की ताजगी का सफर तय कीजिए।
1: अलैका या सैयदी,
0: यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6.